और मार्च 2025 में गजा में अपने फौजियों के हाथों 15 इंसानी इमदादी कारकुनों के कत्ल की तहकीकात शुरू करेगा। इसराइल ने इससे कबल इन हलाकतों में मुलव्वस होने से इनकार किया था और महीनों बाद अपने इब्तदाई तहकीकात में कहा था कि इसकी अफवाज गाड़ी के करीब या फायरिंग की हद में मौजूद नहीं थी। हिंद रजब शुमाली गजा में एक गाड़ी में सफर करने वाले खानदान के साथ अराकीन में से एक थी जिस पर फायरिंग की गई। पहले हमले में जिंदा बच जाने वाली रजब ने कई घंटों तक फोन पर फलस्तीन हलाले अहमर के पैरामेडिक से मदद की अपील की, जबकि इसे बचाने के लिए भेजी गई एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की गई। फलस्तीन हलाले अहमर के साथ एक मायूसकुन और घंटों तवील फोन कॉल पर आखिरी बार रब्ता होने के 12 दिन बाद रजब की बेजान लाश गोलियों से छलनी एक गाड़ी से मिली। पैरामेडिक्स के साथ रजब की फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग ने बैन अल-अक़वामी सतह पर शदीद गम गुस्से को जन्म दिया और इसकी मौत और गजा में हलाक होने वाले हजारों दीगर बच्चों के एहतसाब के मुतालबात को तकवीत दी। इस वाकये से मुतासर होकर बनाई गई फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब को 2026 में ऑस्कर के लिए नामजद किया गया।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक बयान में ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान इंतजामिया ने उन्हें पेश किए गए माहदे के मौके को गंवा दिया है। उन्होंने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया कि मैं किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक के सबसे ज्यादा तबाहकुन माशी ऑपरेशन का ऐलान कर रहा हूं। अपने बयान में ईरानी मईशत और अस्करी ताकत को शदीद धचका लगने का दिफा करते हुए ट्रंप ने कहा कि तेल की स्मगलिंग, कैश ट्रांसफर्स और जाली कंपनियों समेत तमाम मालियाती जराए को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर ने यह इंतबाह भी किया कि कोई भी ऐसा मुल्क जो ईरान को सहारा देगा या उसके साथ तजारत जारी रखेगा उसे भी शदीद मुआशी नतायज का सामना करना होगा।
2: अमरीका ने ईरान के खिलाफ शुरू की जाने वाली जंग में अब तक जख्मी होने वाले अपने फौजियों की तादाद की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी हैं। अमरीका वजारत दिफा पेंटागन ने अपने डेटाबेस को अपडेट करते हुए जख्मी फौजियों की फहरिस्त में 50 से ज़ायद नए नामों का इजाफा किया है। इस तरह 28 फरवरी से जारी इस जंग में जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों की कुल तादाद बढ़कर 757 हो गई है। दूसरी जानब ईरान के साथ जंग में हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद की भी तजदीद की गई है जो अब 18 हो चुकी है। इससे कबल डेटाबेस में गायब होने वाले रिकॉर्ड ने काफी तवज्जो हासिल की थी। गुज़श्ता माह सिस्टम से हटाए गए 4 हलाकतों और दर्जनों जख्मियों के रिकॉर्ड को दोबारा शामिल किए जाने पर तनकीद के जवाब में पेंटागन ने सूरतेहाल को तकनीकी खराबी करार दिया है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सफारती मुज़ाकरात इस वक्त तआतुर का शिकार हैं। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की मुअत्तली और आबनाए हुरमस में कशीदगी बरकरार रहने के बावजूद ये दावा किया है कि ये अमल बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है।
1: अमरीका का सरकारी कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज कर गया। अमरीकी वजारत खजाना के आदाद शुमार के मुताबिक अमरीकी हुकूमत का कर्ज पहली मरतबा 40 ट्रिलियन डॉलर से तजावज कर गया है। इस इजाफे से मुल्क के माली मुस्तकबिल के बारे में तश्वीश में इजाफा हुआ है। सरकारी कर्ज 40.47 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो एक दिहाई से भी कम अरसा कबल के मुकाबले में 2 गुना से ज्यादा इजाफा है। वाज़ रहे कि COVID-19 वबा के दौरान अमरीका में कर्ज लेने की रफ्तार में तेजी से इजाफा हुआ है। मुसलसल अखराजात, आमदनी और अखराजात के दरमियान अदम तवाजुन और बढ़ते हुए सूदी अखराजात वफाकी मालियात पर दबाव बरकरार रखे हुए हैं।
2: ईरान ने खलीजी ममालिक को अमरीका की मदद से परहेज करने की तंबीह की है। ईरान मुसलह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र खलीजी ममालिक को खबरदार किया है कि वो अमरीकी अफवाज की मदद से बास रहें। उन्होंने कहा है कि अमरीकी फौज को किसी भी किस्म की मदद की फराहमी या इसकी सरगर्मियों में सहूलतकारी को वाशिंगटन के साथ शराकत दारी तसव्वुर किया जाएगा। अब्दुल्लाही ने खित्ते के अड्डों पर फौजी तैयारों, अमरीकी फौजी तैयारों, खसूसन फजाई ईंधन की भराई करने वाले तैयारों की मौजूदगी तरफ इशारा किया और कहा है कि मेज़बान ममालिक की मालूमात में लाए बगैर इस तरह की तायुनाती मुमकिन नहीं है।
1: रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के 103 जंगी कैदियों का तबादला किया है। रूस और यूक्रेन ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी में तय पाने वाले माहिदे के तहत एक दूसरे के 103 जंगी कैदियों का तबादला किया। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि वापस आने वाले रूसी फौजियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए बेलारूस मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने तस्दीक की है कि मुसलह अफवाज, रियासती सरहदी मुहाफिज सर्विस और नेशनल गार्ड के अहलकारों को रिहा कर दिया गया है। मास्को ने दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के ताज़ा तरीन तबादले में सालसी करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया है।
2: चीन के सूबे हबेई के एक तजारती मरकज में लगने वाली आग के नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। चीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी शिनहुआ ने ज़िले हुकूमत के हवाले से बताया है कि ये आग चीन वांग दाओ शहर के हाई गांग जिला में वाकई एक मरकज की जमीनी मंजिल पर सुबह सवेरे लगी। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एमरजेंसी मैनेजमेंट और तिब्बी टीमें फौरी तौर पर जाय वकूआ पर पहुंच गई हैं। आग पर 1 घंटे से भी कम वक्त में काबू पा लिया गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आग लगने की वजूहत जानने के लिए तहकीकात जारी है।
1: तुर्की की दिफाई सनत असासान की पानी की गहराइयों में कौमी आँख के मरकजी ख्याल के साथ तैयार करदा देरिन ग्यूज खुदकार जेर आब गाड़ी गोलजुग के पानियों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेगी। देरिन ग्यूज जेर आब गाड़ी को मुख्तलिफ नौयत की ज़रूरियात को मद्देनजर रख कर तैयार किया गया है। इससे बारूदी सुरंगों के खिलाफ कार्रवाइयों, जेर आब मौजूद अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़ जेर आब पाइपलाइनों की निगरानी, जेर आब तलाश और बंदरगाहों की हिफाजत जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। خودکار طور پر مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھنے والا یہ نظام زیر آب خطرناک اور دشوار گزار علاقوں میں تلاش و نگرانی کی سرگرمیوں کو کم ترین انسانی مداخلت کے ساتھ سر انجام دینے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اصل سان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ اصل سان دیرنگیوز خودکار زیر آب گاڑی اس وقت گولیوں کے پانیوں میں موجود ہے۔ ہم اسے دیکھنے کے خواہش مند تمام زائرین کو ٹیکنو فیسٹ ماوی وطن میلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ زائرین دیرنگیوز کو 20 سے 30 اگست کے دوران گولیوک شپ یارڈ کمانڈ میں منعقدہ ٹیکنو فیسٹ ماوی وطن کے دوران قریب سے دیکھ سکیں گے۔ اس میلے میں TRT بھی ابلاغی شراکت دار کی حیثیت سے شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔